हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चेत की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सब तुम काव हो आप हाथ दे मोहे बिचाव हो।

अपार। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृहत सब धारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम।

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साहब सिंह जी, आप संगतां ने शाम के दवान विच हारी भर के गुरबाणी कीर्तन कथा दे लाहे प्राप्त कीते हन। सतगुरु साहब जी रहमत कारण आप सब दी दर हाजरी प्रवान करन, दरो करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शन जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा, गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। राम नाम मन लागा, जम लचाए कर भागा, प्रभ जी तू मेरो सुखदाता। बंधन काट करे मन निर्मल, पूर्ण पुरख विदाता रहाओ। नानक प्रभ अविनासी, ताकी सेव न बिरथी जासी। आनंद कर है तेरे दासा, जप पूर्ण होई आसा। बिलावल महला पंचपा, ताती बावना लग गई पार। ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारा, राम कार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया, जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई। रहा राख लिए तिन रखन हार, सब व्याध मिटाई। कह नानक कृपा पई, प्रापे सहाई। सलोक जह साधु गोबिंद भजन, कीर्तन नानक नीत। अणा हो अणा तू नह छुट्ट है, निकट न जाई हो दूत। सलोक महला पंचपा, मन मह चितवो चितवनी, उद्यम करो उठ नीत। हर कीर्तन का आहर, हर देहो नानक के मीत। सोहेला राग गौड़ी दीप की, महला पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिया, करते का होए बीचारो। तित कर गाव हो सोहेला, सिवरे हो सिरजन हारो। तुम गाव हो मेरे निर्भव का, सोहेला हो वारी जित सोहेला। सदा सुख होए रहाओ, नित नित जीड़े समालियन। देखा गा देवन हार, तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कमन सुमार। संबत साहा लिखिया, मिलकर पाव हो तेल। देहो सज्जन असी सड़िया, जे हो वै साहिब स्यो मेल। कर कर एहो पहुचा, सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिया, नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला, छिय कर छिय गुर छिय उपदेश। गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए। सो कर राख वडाई तोए रहाओ। विसवे चसया कड़िया पहरा, थिती वारी माह होवा। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला, गगन मै थाल। रव चंद दीपक बने तारिका, मंडल जनक मोती। तूप मल्याण लो पवन चबरो करे, सगल बन राए फूलन ते ज्योति। कैसी आरती होए पाव खंडना, तेरी आरती अनहता। शब्द वाजंत पेरी रहाओ, सहस तव नैन नन नैन। है तोहे काओ सहस मूरत, नना एक तोही। सहस पद बिमल नन, एक पद गंध बिन। सहस तव गंध इव चलत मोही। सब मह ज्योत ज्योत है सोए, तिस दै चानन सब मह चानन होए। गुर साखी ज्योत प्रगट होए, ज्योत इस भावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद, लोभित मनो अन दिनो मोहे। आही प्यासा कृपा जल देहे, नानक सारंग होए जाते तेरै नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बह भरिया। मिल साधु खंडल खंडाहे, पूरब लिखत लिखे गुर पाया। मन हर लिव मंडल मंडाहे, कर साधु अंजलि पुन वड्डाहे। कर डंडाओत पुन वड्डाहे रहाओ, साकत हर रस साधना जानिया। तिन अंतर होम मैं कंडाहे, ज्यों ज्यों चल है चुबै दुख पावहे। जम काल सह है सिर डंडाहे, हर जन हर हर नाम समाणे। दुख जन्म मरन भव खंडा हे, अविनाशी पुरख पाया परमेसर। बहुसोभ खंड ब्रह्मंडा हे, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे। हर राख राख वड वड्डा हे, जन नानक नाम आधार टेक है। हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंचपा, करो बिनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, ਈਹਾ ਖਾਟ ਚਲਹੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਆਉਦ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸਰਹਿਣਾ ਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ।

मन गहा अनक भगत जाके चरण पुजारी सगल मनोरथ पूरन हारी खिन में ऊने सुबर भरिया खिन में सूके की।

ही दुख पाया पूर्ण होत न कारज माया काम क्रोध लोभ मन लीना तड़फ मुआ जो जल बिन मीना जिसके

जी को आधार गुर प्रसाद जपो नित पाई तार लै सागर संसार रहाओ जिन को लिखिया हर एहो निदान से जन दर गै पावह मान सूख सहज अन्न।

नाम हमारे भोजन पाओ, नाम हमारे मन का सुआओ, नाम न विसरे संत प्रसाद, नाम लै तन हद पूरे नाद, प्रभ कृपा ते नाम नौ निध पाई, गुर कृपा ते नाम स्यो बनियाई, धनवंते सही प्रधान, नानक जाके नाम निधान, भैरो मोहल्ला पंजवा।

कोट अगा मिटे हर नाम तिस सरनाई सदा सुख होए कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ जाके करतब लखी न जाहे जाका परवासा सब घट माहे

लीनो सब जन का पढ़दा नानक तिस की औसत करदा भैरो मोहल्ला पांजवा रोवन हारी रोज बनाया बलन बर्तन को संबंध चेते आया

नाम हमारे मजन स्नान, नाम हमारे पूर्ण दान, नाम लैत ते सगल पवीत, नाम जपत मेरे पाई मीत, नाम हमारे सौन संजोग, नाम हमारे त्रिपत सुभोग, नाम हमारे सगल काचार, नाम हमारे सगल आचार।

मंडल ठाकर ठाकर बिसराम, संत मंडल ठाकर बिसराम, नानक ओत पोत भगवान, भैरो मोहल्ला पांजवा, रोग कवन जा राखे आप, तेह जन होए ना दूख।

तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कहो नानक तुमरी सरनाई जो पावे त्यो रखो गोसाई। भैरो मोहला पंजवा गुर मिल त्यागो दूजा पाओ गुरमुख जप्यो हर का ना।

पुरख निरंजन सिरजनहार जी जंत देवे आहार कूट खते खिन बख्शनहार भगत पाए सदा निस्तार साचा तन साची वडियाई गुर पूरे ते निश्चल मत पाई कर कृपा जिस राखन हारा ताका सगल मिटे अंधियारा पार ब्रह्म स्यो लागो ध्यान पूर्ण पूर रहो निर्वाण भरम पौ मीट मिले गोपाल नानक को गुर भय दयाल पैरो मोहल्ला पांजवा जिस सिमरत।

तेरे सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सजानी सच हुक्म तुम्हारा।

सुकहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुपाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।

से पुरख प्रधान, प्रभु कौ सिमर है से बेमोह ताजे, प्रभु कौ सिमर है से सर्व के राजे, प्रभु कौ सिमर है से सुखवासी, प्रभु कौ सिमर है सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला, प्रभु कौ सिमर है से पर उपकारी, प्रभु कौ सिमर है तिन सद बलिहारी। प्रभु कौ सिमर है से मुख सुहावे, प्रभु कौ सिमर है तिन सुख बिहावै, प्रभु कौ सिमर है तिन आत्म जीता, प्रभु कौ सिमर है तिन निर्मल रीता, प्रभु कौ सिमर है तिन अनद कनेरे, प्रभु कौ सिमर है बस है हर नेरे। संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु कै सिमरन कारज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबहो न चूरे। प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन निहचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। सिमरह से जान जिन कौ प्रभ मया, नानक तिन जन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए। हर सिमरन पए सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मह आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन।

जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै माल खजीना, हर धन जन कौ आप प्रभ दीना, हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते तरे, पार जात एहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वडभागी पाईऐ, संत की सेवा

देख अंतरमल माया छपस नाहे कछ करै छपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरह अथाह जाकै अंतर बसै प्रव्याप नानक तेजन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गह लिहो ओढ़ निभावै कहा बुझारत बूझै डोरा निस कहियै तौ समझै पोरा कहा बिसन पद गावै गुंग जतन करै तौ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत ऊहा उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सो आवै न चीत जो बैराई ता स्यो प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै अनद केल माया रंग रसै दृढ़।

अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्त कारण बिखोट गवावै एक भी ना दे दस भी हिर ले तो मूढ़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा जा कै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साहो अपनी दे रास खात पीत बरत अनद उलास अपनी अमान कच

मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साध की सरन, नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्ब कौ हिर है, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्र रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर बकार कौ ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लभाव है, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा, बिन बुझे मिथ्या सब पए, सफल देह नानक हर हर नाम लए। बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताकै दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों कृपन के निरारथ दाम। तन तन ते जन जेह घट बस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाओ, रहत अवर कछ अवर कमावत।

जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आप है मानै आप है आप आप करत नबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव स्यानप सगल ते रहत सब कछ जानै आत्म की रहत जिस भावै तिस लय लड़ लाए थान थनंतर।

जय प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नानक जस कहै जय प्रसाद सुनह कर्ण नाद जय प्रसाद पेख है बिस्माद जय प्रसाद बोल है अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना जय प्रसाद हसत कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परम गत पाव है जय प्रसाद सुख सहज समाव है ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लाग हो गुर प्रसाद नानक मन जाग हो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ कौ मूल ना मनो बिसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तू ताको जाप जय प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसह जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावह साच रे मन मेरे तू ता स्योराच

प्रभ कृपा ते होए परगास, प्रभु दया ते कमल बिगास, प्रभ सब प्रसन्न वसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए, सर्व निदान प्रभ तेरी मया, आप हो कछो ना किन्हू लया, जित जित लाभ।

ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की सो

तत के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर भये सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समाव है अपने जन को सास सास समारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण

ज्यो प्रभावै तिवै नचावै जो तिस भावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोए कबहू साध संगत ओ पावै उस अस्थान ते बौर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस अस्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यो जल मह जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना।

अष्टपदी जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस कौ कर्म।

समाए आप उपदेशा समझा आप आपे रचया सब कै साथ आप कीनो आपन विस्थार सब कछ उसका ओह करन हार उसते भिन्न कहो किछ होए थान थरंतर एक सोए अपने चलत आप करण हार कौतक करै रंग आपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किन वखयानी सच सच सच सब कीना कोट मध्य किन बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरवन बखयाणी पवित्र पवित्र पवित्र पनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत सरण जो जन परै सो जन उधर नहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत का दुखन आर जा कटै संत का दुखन जमते नहीं छुटै संत का दुखन सुख सब जाए संत का दुखन नरक में पाए संत का दुखन मत होए मलीन संत का दुखन सोभा ते हीन संत के हते को रखे न कोए संत का दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा महजलै संत कै दुखन सब को छलै संत कै दुखन

तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नीचाए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत भावै ता ओए भी गत पाहे। संत का निंदक महा अत ताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अर दीन, संत के निंदक कौ सर्ब रोग, संत के निंदक कौ सदा बिजोग। संत की निंदा दोख मह दोख, नानक संत भावै ता उसका भी होए मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित। संत के दुखी कौ डान लागै, संत के दुखी कौ सब त्यागै, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी। संत का दुखी जन्मै मरै, संत की दुखना सुख ते टरै, संत के दुखी कौ नाहीं ठाओ, नानक संत भावै ता लय मिलाए। संत का दुखी अध बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज न पहुँचै, संत के दुखी को उद्यान परमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै। संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाहे, आपन बीज आपे ही खाहे। संत के दुखी कौ अवर न रखन हार, नानक संत भावै ता लय उबार। संत का दुखी इउं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईदन नहीं तरापै, संत का दुखी छुट्टै अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुरही पया, नानक जो तिस भावै सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी कौ दरगह मिलै सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइयै, संत का दुखी न मरै न जीवाइयै। संत के दुखी की पूजै न आसा, संत का दुखी उठ चलै निरासा, संत कै दुख न तृष्टा कोए, जैसा भावै तैसा कोई होए। पया किरत न मिटै कोए, नानक जानै सच्चा सोए, सब काट तिसके ओ करनै हार, सदा सदा तिसकौ नमस्कार। प्रभ की उस्तत करहो दिन रात, तिसह त्यावहो सास ग्रास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करना हार, दूसर कौन कह बिचार, जिसनो कृपा करै तिस अपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से सलोक। तजहो स्यानप सुरजन हो, सिमर हो हर हर राय, एक आस हर मन रख हो, नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी। मानुख की टेक वृथी सब जान, देवन कौ एक है भगवान, जिसका दिया रह अगाए, बहुर न तृष्णा लागै आए। मारा राख है एको आप, मानुख कै किछ नाही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागै कोए। उस्तत मन मह कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सोहिला कर लह जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटह पाप जपिया हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उज्जल मथा। बड़ भागी ते जान जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह बिचार, से धनवंत गरी संसार। मन तन मुख बुल है हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने, इत उत की हो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन्हें निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपने आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओहो हर जन रहत। अन दिन कीर्तन केवल बखियान, गृहस्थ मह सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसह न लागह दुख। जिसका हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सोहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजया, गुरप्रसाद तत सब बूझया।
ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ, ਨਹਿ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੈ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ, ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ, ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾਪ ਓ ਥਾਪ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ, ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਹੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋਭਾਵੰਤ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਧਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ, ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਬਡ ਭਾਗੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵਹਿ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕਉ ਉੱਤਮ ਕਰ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਸੰਗ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ, ਕਰਣੈ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਓਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨ ਆਏ, ਆਪਸ ਕਉ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ। ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨ ਹਾਰ, ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਨਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀਆ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੌ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਕਿਛ ਕਾਮ, ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ, ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘੱਟ ਸੋਹੈ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ, ਜਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ, ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ, ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾ ਤਾਰ, ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੈ ਗਾਵਾਰ, ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂਟੈ ਹੋ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ, ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨਹਿ ਅਸਥੰਮਨ, ਜਿਉ ਪਾਖਾਣ ਨਾਵ ਚੜਤਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੈ, ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ, ਜਿਉ ਮਹਾਂ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛੋ ਧੂ

तेरा संग लपट रहो रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत सेती कर जाहे जिस वखर कौ लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया तज अभमान लिहो मन मोल राम नाम हिरदे महतोल लाद खेप संत है संग चाल अवर त्याग बिख्या जंजाल धन धन कह सब कोय मुख उजल हर दर गह सोए एहो वापार विरला वापार है नानक ताकै सद बलिहार है चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साध को अपना जियो साध की धूर करो इसनान साध उपर जाइए कुर्बान साध सेवा वडभागी पाइय साध संग हर कीर्तन गाइय अनक बिघन ते साधु राखै हर गुण गाए अमृत रस चाखै ओट गही संत है दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक कौ जीवा लनहार भूखे कौ देवत आधार सर्व निदान जाके दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाहे सब किछ तिसका हो करना जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग जप जन सदा सदा दिन रैणी सब ते ऊच निर्मल एह करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए त्यो लोए जाके हृदय एको होए सच करनी सच ताकी रहत सच हृदय सतमुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वरत साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता श्लोक रूप ना रेख ना रंग किछ त्रिहु गुण ते प्रभ भिन्न तिसह बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदे अविनाशी प्रभ मन मह राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिसते परे नाही किछ कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बखसंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन एहो अनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र ना जान होर अनद रूप मंगल सद जाकै सर्ब थोक सुनिह करता कै राज महराज जोग मह जोगी तप मह तपीसर गृहस्थ मह भोगी त्याए त्याए भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख काकने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जान पूत सगल परोई अपने सूत समत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम त्या वह से त्यो गुण मह जा को परमाए जन्म मरे फिर आवै जाए ऊच नीच तिसके अस्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करह एक रंग नाना बिद कीनो विस्थार प्रभ अविनाशी एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहे ओ पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संग उदरे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद मह सो जान गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब महे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मले जिसह बुझाए तिसह सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर दे प्रवेश सत निरत बूझा जे कोय नाम जपत ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जान अपनी मित गत जिसकी श्रेष्ठ सो करण हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जान किया नानक जो तिस भावै सो वर्तिया बिसमन बिसम पए बिसमाद जिन बूझया तिस आया स्वाद।

आए नानक की प्रभ बेनते अपनी भगती लाए अष्टपदे जाचक जन जाचै प्रवदान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम है त्यावो चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नितनीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपहर परे प्रेम रस रंग उपजै चाहु साध कै संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास अनदन लिवलाग बटभागी जप्या प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लय जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच्छ पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहया सद संग हजूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुरप्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै गुरपूरै तत एह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करहो एहो काम आन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अव रह नाम जपावहो भगत पाए तरिया संसार बिन भक्ति तन हो सी छार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपहो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुआओ नेत्र हो पेख दर्स सुख होए मन बिकसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावै संग एक बस्त दीजै करमया गुरप्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बखसंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमुख हर के गुण गाए अनक राज भोग बडयाई हर के नाम की कथा मन पाए बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत भले सो करनी सोभा धनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत

जब अकार एहो कछ न दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर्ख सोग कह किसह व्यापत जब अपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम अपन खेल आप वरतीजा नानक करन हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आपह आप अपनी जोत धरै तब कवन निडर कवन कत डरै अपन चलत आप करण हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल शिद्र लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसह भूख कवन त्रिपतावै करन करावन करन हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जह सर्व कला आपह प्रवीन तह वेद कतेव कहा को उचीन जब अपन आप उतार तो सगन अपसगन कहा विचार जह आपन ऊच आपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिया चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जह अचल अछेद अपेद समाया ऊहा किसह व्याप्त माया आपस कौ आपह आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश जह एक है एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह आपन आप पतियारा तह कौन कथे कौन सुन नहारा बहु बेअंत ऊचते ऊचा नानक आपस कौ आपह पहुचा जह आप रचे उपर पंच अकार त्यो गुण मह कीनो विस्थार पाप पुन तह पई कहावत को नरक को सुरक बंछावत आल जाल माया जंजाल हम मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखयान आपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तौ नानक एकै जह अविगत भगत तह आप जह पसरै पासार संत प्रताप दुहु पाख का अपह तनी उनकी शोभा उनहू बनी आपह कौतक करै अनद चोज आपह रस भोगन निरजोग जिस पावै तिस आपन नाय लावै जिस पावै।

जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार, नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथा आप सुनना हार, आप है एक आप विस्तार, जात सुभावै ता सृष्ट उपाय, आपना भाणै लय समाय, तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए, जा कहो प्रभ जियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगल सृष्ट का जेता, जी जंतर सबता कै हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखै तिस कोई ना मारै, सो मुआ जिस मनो बिसारै, तिस तज अवर कहा को जाए, सब सिर एक निरंजन राय, जी की जुगत जाकै सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ, गुण निधान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। पूर्ण पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जाना आप, अंतर जामी रहो व्याप, प्रतपालै जीन बहुपात, जो जो रचो सो तिसै त्यात। जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करह हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक एक जान्या, जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए। सेवक काओ सेवा बने आई, हुक्म बूझ परम पद पाई, इसते ऊपर नहीं विचार, जाकै मन बसै निरंकार, बंधन तोर पए निर्वैर, अनदिन पूजह गुर के पैर, एह लोक सुखिए परलोक सोहेले, नानक हर प्रभ आपह मेले। साध संग मिल करहो आनंद, गुण गावहो प्रभ परमानंद, राम नाम तत् करहो विचार, दुर्लभ देह का करहो उदार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण का यह सुवाओ, आठ पहर प्रभ पेखो नेरा, मिटै अज्ञान बिनसै अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसाव हो, मन इच्छे नानक फल पाव हो, हलत पलत दो लिहो सवार, राम नाम अंतर उरतार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिस साच परिख्या, मन तन नाम जपो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पौ जाए, सच वापार करो वापारी, दरगह निबह खेप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माहे, नानक बहुर न आवह जाहे, तिस्ते दूर कहा को जाए, उबरै रख नहार त्याए, निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन कौ कोय न पहुँचन हार, सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्य पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सो होत निहाल, ताकै निकट न आवत काल, अमर पए अमर।

संत पेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ दीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक सघट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है नौ निद अमृत प्रभ का नाम देही मह इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत धरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पाणी वह संतर माहे चार कुंट दह दिसे समाहे तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमृत मह देख ससियर सूर नक्षत्र मह एक बाणी प्रभ की सब को बोलै आप अडोल न कबहू डोलै सर्व कला कर खेलै खेल मोल ना पाई है गुण है अमोल सर्व ज्योत मह जा की ज्योत धार रहो स्वामी ओत पोत गुरप्रसाद भरम का नास नानक तिन मह इहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुन है शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोए सुख मानै करन करावन हार प्रभ जानै अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावैता करे विस्थार तिस भावैता एक अंकार अनक कला लखी न जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्वभूत आप वरतारा सर्व नैन आप पेखन हारा सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नीमाया सब कै मद अलिप्तो रह जो किछ कहना सो आपे कहै आज्ञा आवै आज्ञा जाए नानक जा पावै ता लय समाए इसते होए सो नाही बुरा और कहो किने कछ करा आप भला करतूत अतनीकी आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोत अपन संग राच ताकि गतमित कही ना जाए दूसर होए ता सो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक इहो जान जो जान तिस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओहो धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का यह सुवाओ जन कै संग चित आवै नाओ आप मुक्त।

गुण गाओ अष्टपदे पूरे गुरु का सुनोपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्याग हो तरंग संत जना के धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अगन सागर तरहो हर धन के भर लिहो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदार हो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बार बार नानक जी का एह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाकै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सवरेन सा अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न भय गुरदेव पूर्ण होए सेवक की सेव आल जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सोहोत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहर न होवै आवन जान हर तन खाट चलै जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम शांत रिद्ध नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मध्य सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग महता की गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुर्लभ देह तत्काल उधारै निर्मल

ओंकार शंख नाव शंख थाव गम गम शंख लो असंख कह सरपार होए अखरी नाम अखरी सलाह

धोते उतर सुखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लिये होए परिय मत पापा के संग ओह तो पहना वह के रंग पुन्नी पापी आखना है कर कर करना लेख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्म ही आव जाहो तीर्थ ताप दया दत दान जे को पाव है तिल का मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतर गल तीर्थ मल नाओ

अहो अमोल गुण अमोल व्यापार अमोल व्यापारी अमोल भंडार अमोल आवह अमोल लै जाहे अमोल आवह अमोल लै जाहे अमोल पाए।

हिले बिलाए आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे विख्यान आखे भरमे आखे अंद आखे गोपी तै गोविंद आखे ईसर आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव केते आखे आखन पाहे केते कहे कहे उठ उठ जाहे केते कीते होर करे ताह न सकह केई के जे वड़ भावे ते वड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल विंगाड़ ता लिखी है शिर गावारा गावार सोदर के हसो कर के हाजत बै सर्व संभाले वाजे नाद अनेक संखा केते वामन हारे केते राग परी स्यो कहियन केते गावन हारे गावे तुहनो पौन पानी बै संतर गावे राजा धर्म दुआरे गावे चित गुप्त लिख जाण लेख लेख धर्म विचारे गावे सर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावे इंद इदासन बैठे देवते अंदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पण निरखीसर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले गावन रत्न उपाय तेरे अड़सड़ तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे

पाले रुवाल शांत वय प्रसाद आद रूपे अनाद मुहूर्त जोन पुरखे अपार सर्वमान तिरमान देव अपे वादे उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र बिरहार ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग नरेख आद पुरखे उदार मुहूर्त अजोन आद असे

के अफुल गुनाह है के सहान साह है के कारण कनिंद है के रोजी दहाद है के राज करहीम है के कर्मम करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गावन है के सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य है।

निवाज है, निरुख गरीब और खिराज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभा है, सुजुगत सुधा है, सदैव स्वरूप है, अपेदी रूप है, समाहतोपराज है, सदा सर्वसार है, समाहतल सलाम है, सदैव काम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, रूप है, उवंगाद रूपे नास रूपे नंगीना में त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभग त्रिवादे गंजे गादे सुभंग सर्भागे सो सर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप है, अछेद है, अछूत है, के नरकं प्रनास है, पृथ्वी और प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, परजुगत अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, परजुगत अनूप है, चातरी छंद

विभुते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभुते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी रूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं श्री कह अमितोमीक है सदैव प्रवाह है अजय है अजा है भगवती शांत।

है, कालखंड से है, परते पर है, कर्ण कर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृताकृत है, मृता मृत है, अमृता मृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, धरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृता मृत है, अजबा कृत है, मृता मृत है, नर नायक है, खलकायक है, विश्वंपुर है, करुणालय है, निरपनायक है, सर्व उपायक है, भवपंजन है, अर्गंजन है, रिपता

जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाह दसवीं कवि उबाज बेनती चाओ पई। हमरी करो हादय रक्षा पूर्ण होए चेत की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा प्रजान। करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो, आप हाथ दै मोहे बचाव। सुखी बसे मोर परिवार, सेवक सिख सबै करतारा। मोर रक्षा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संघरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो पर चाहूं सो तुम ते पाऊं।

कुमारा नमस्कार तिसहि को हमारी सकल पर जाय नाम सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मो बद कियो कर कर के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिशांत चिटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी

विदृष्टो ये श्रम हो मेरे हो सात्य सुन नैनो पठाए सात्य सुन नैनो पठाए श्री लाए सुनो सतबाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस मानी सच अलाखे विडाणी ताकि गद कहीं न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनहो पवित्र हो बहु सात्य सुन नैनो पठाए।

श्री भगवान तिन बलताग तिन घर ब्राह्मण पूरे नादुना भी आव साध उड़ी रास पुड़ा बापार कुड़ बोल करे आहार सारम धर्म काड़।

संग दीप के थाप कालंका कौंतल्यो रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा ओ कानरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वह गाव पंचो संग बरंगन लाव बैरारी करनाटी तरी गौरी गाव आसावरी तै पाछ सिंधवी अलापी श्री राग स्यो पांचो थापी सालू सारग सागरा और गुंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खट मेघ राग वै गाव पंचो संग बरंगन लाव सूरठ गुंड।

सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सत सिउ पवित संगत सुभाइया कहंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज ना उपजे विण सहज सहसा ना जाय नह जाय सहसा कित संयम रहे कर्म कमाए सहसे जियो मलीन कित संयम धोता जाय मन धोवो शब्द लागो हर स्यो रहो चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे सहसा विजाय जियो मैले बारो निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए हारे आए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा में नाम ही उत्तम सो सुने नाही फिरे ज्यो बेतालिया कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सत गुरते करणी कुमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारी कहे नानक जिन मर निर्मल सदा रहे गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवे ता सनमुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले गुर के चरण हिरदे त्याए अंतरात्मा संभाले आप छड़ सदा रहे परणय गुर बेने अवरण जाने कोए कहे नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए जे को गुर ते वे मुख हुआ बिन

बिन सत गुरु मुक्त ना पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु के री बाणिया सिरबाणी। जिन को नदर कर्म होवै हृदय तिना संवाणी। पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग जपहो सारंग पाणी। कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कह

कहे नानक सतगुरु बाजो होर कची बाणी। गुर का शब्द रतन हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा हो आसुमाओ। शब्द सेती मन मिलया सचे लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसनू दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन हीरा जित जड़ाओ, सेव सकते आप उपाए। कह करता आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप वेखाए। गुरमुख किसे बुझाए तोड़े बंधन होवे मुगता, शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक सस्यों लिवलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे। ततै सारण जानी, ततै सारण जानी गुरु बाजो, ततै सारण जानी ते गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रहन विहानी गुर किरपा ते से जन जागे। जिन्ना हर मन वसया बोले अमृत बाणी, कहे नानक सो तत पाए। जिसनु आन दिन हर लिव लागे जागत रहन विहानी। माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो वसारिये, मनो क्यों वसारिये वडदाता जगन में हर पंचावे। उसने कोय पोय न सकी जिसनू अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए। गुरमुख सदा संभाली है कह नानकी वरदाता, सो क्यों मनो वसारी है। जैसी अग्नुद्र मैं तैसी बार माया, माया गण सब एको जे ही करता है खेल रचाया। जा तिस भाणा ता जमया परवार भला पाया,

पाया पाया हर आप अमुल कहे मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे विटों रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुर जे मिलाए तिसनू सिर सौंपिया विचों आप जाए जिस दा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए।

हर रास मेरी मन बन जा रा, हर रास मेरी मन बन जा रा, सतगुर तेरा सजानी। हर हर नित जप्यो जियो लाह खट्यो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा, कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ वनजार। हे रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए, होर तै कित जिचरा रस पल्ले न पाए। हर रस पाए पल्ले पिए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाई है सतगुर मिले जिसे आए। कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसे मन आए।

जग में आया जिन हर तीरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कहे नानक हो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जोत तरी हर बिन अवरना देखो कोई हर बिन अवरना देखो कोई नदरी हर निहालिया इहो विस संसार तुम देख दे हो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझे आ जा वेखा हर एक है हर बिन अवरना कोई कह नानक नेत्र अंध से सत गुर मिलया है दिब दृष्ट होई हे सरवणो मेरे हो साचे सुनदे नो पठाए साचे सुनदे नो पठाए श्री रलाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना

0: इतनी सेवा प्रवान कर लीजिए, कीर्तन करते खुला माफी बख्शी अगला प्रोग्राम शर्म करो जी। बुलाओ फतेह
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी धन्यवादी हाँ, सत्कार योग ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी मुख सेवादार उन्होंने जथेदार जिन्होंने बड़ा ही रस भिन्ना कीर्तन आप संगत सरवण कराया है, महाराज दे गुण गायन किए ने, सो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हुण मैं बेनती करदा सत्कार योग भाई गुरमेल सिंह जी कनेडा वाले जेडा दे बड़ी गुरु की बख्शिश है, जिन्हां नूं दास प्राणा जाण दा सवावां करन दा भी मौका मिलिया, बड़ी चढ़दी कला वाले ने अते बड़े नताड़क प्रचारक ने। आओ भाई साहब हुणां तों कथा विचार गुरबाणी नाल जुड़िए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
0: वाहेगुरु

मन गुरु दे चरण कमलां नाल रंगिया गया, एकमेक हो गया है। अगर जे प्रतख विच जाइए ते गुरु दे चरण ने निर्गुण स्वरूप करके जाइए ते फिर उत्थे हड मास चम दा चरण नहीं है, हड मास चम दा चरण नहीं, उह चरण की है? ते दशमेश पातशाह जी जाप साहिब विच कहिंदे ने चित चरण नाम। हां जी समझ आ गई, चित चरण नाम, गुरु दा नाम ही गुरु दे चरण ने। समझ आ गई, गुरु दा नाम ही गुरु दे चरण ने। गुर के चरण जी का निस्तारा, समुंद सागर जिन खिन मैं तारा, कोई होवा कर्म रत कोई तीर्थ नाया, दासी हर का नाम ते आया, बंधन काटन हार स्वामी, जन नानक सिमरै अंतर जामी। अगर प्रतख गुरु दे चरण धूड़ मिल जाए ना, असंगत ये गुरु रूप है, चरण धूड़ मिल जावे तो भाई गुरुदास साहब जी कहिंदे ने अठाठ तीर्थ जेड़े ने, आखो जी गज के सतनाम श्री गुरु दे चरणा दी खाक मिल जावे, आ जन्ने बैठे ने संगत गुरु रूप हो जाती है। ते भाई साहब जी कहिंदे ने अठाठ तीर्थ गुरु दे चरण धूड़ दे सो दर्श नहीं, बराबर नहीं है। श्री मान भाई गुरुदास साहब जी एक बित बड़ा सोहना लिखिया जे, कहिंदे सुर सती अग्नि जायो तीर्थां दे ना, सुर सती जमना गोदावरी गया प्राग सेत को रखेत मानसार है, कांसी काती द्वारा मती माया मथुरा अयोध्या गोमती अवंत का केदार हिमतार है, नर्मदा बिपद बन देव थल कवलास नील मंदिर चाल सवेर गिरवर है, तीरथ अर्थ सत संतोख दया धर्म श्री गुर चरण रज सगल ना सरन है। कहिंदे गुरु दे चरणा दी खाक वर्गे नहीं है, ता ही कहिंदे गुरु दी वडियाई है। चरण कमल जा का मन रप, सोग अगन तिस जन ना व्याप, गरीबन वाज संसार वाले झात मार दे जे। संसार ते दुखां दा समुंदर है, ते गरीब निवाज जदों कथा कहानियां संगतां सुनदियां ने कथा वाच के गल कहिंदे कि संसार तो तरना बड़ा औखा, ते बंदा डर जांदा। ये कहानियां चलदियां ने गुरु नानक दे घर विच, गरीब निवाज बख्शिश करो, संसार समुंदर तो दुखां दे समुंदर तो तरिया किवें जावे, बड़ा डर लगदा जे। कोई सौखा ढंग है, असी सारे सौखैन ते गल भलदे आ ना कि सानू आपे करना कुछ ना पवे, असी सानू सौखा ही मिल जावे। इथों तक साडी फिदत हो गई है कि सानू बाणी पढ़ी पढ़ाई मिल जाए, आप ना पढ़नी पै जाए। गरीब निवाज कोई सौखा ढंग है संसार समुंदर तो तरिया जाए? तो महाराज ने प्रश्न का जवाब दिता।

0: परम सत्कार योग गुरु की साध संगत, सतगुरु सच्चे पातशाह की अपार कृपा हुई है जो आप जी की संगतां की सेवा करन दा सुभागा समा मिलिया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का कोट अन कोट शुक्र धनवाद शुकराना है। प्रबंधक कमेटी का तह दिलों शुक्र गुजार हाँ जिन्होंने दासा नूं समा दे के नवाजिया। आप सारी संगत रब रूप संगतां शीस बख्शियो, सतगुर मेहर भरिया शीस ते हथ रख के सेवा लैंदे रहन। फुलां चुक्कां दी खिमा करदे होए गज के फतेह बुलाइए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई जसपाल सिंह जी पौंटा साहब वाले ते उन्हां दे जथे दा, जिन्होंने आप संगतां नूं कीर्तन द्वारा निहाल किया। कुदरती तौर पर अज का जो दिन ते अज दे ओ जथे हन, ये उस पावन पवित्र धरती दे जिन्हां नूं सेवा करन दा पड़भागा समा प्राप्त होया। दोनों ही जथे उस पवित्र धरती तो पहुंचे ने पौंटा साहब की धरती तो। हुण आप जी दे सन्मुख भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी पौंटा साहब वाले अरे उन्हां दा कीर्तन यथा कीर्तन की हाजरी भरेगा। जिवें कि आप जी नूं पहलां भी सवेरे भी बेनती की है, आने वाले दिनों दे विच बहुत ही इतिहासक दिहाड़े इस महीने दे विच आ रहे हैं। 30 अगस्त नूं धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपूर्णता दिहाड़ा आ रहा है। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जदों 1604 दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संपूर्णता की है, वह 30 अगस्त नूं आ रहा है। तो 1 सितंबर नूं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पहला प्रकाश दिहाड़ा आ रहा है। सो आप संगतां दे चरणां च बेनती है कि 30 अगस्त और 1 सितंबर नूं बढ़ चढ़ के हाजरियां भरन दा यतन करो। आओ हुण सत्कारयोग भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी पौंटा साहिब वालियां पासों कीर्तन सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।

सब सिखन को हुक्म है, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, जो प्रभु को मिल बोच है, राज करेगा खालसा, ख्वार हुए सब लेंगे, वाहिगुरु नाम जहाज है।

गुरु प्यारी साध संगत, आप सारे गुरदरबार विच सतगुरुआं दी हजूरी विच बड़े बैरागमय समय विच जुड़ बैठे हो। सत्कारयोग माता जी, जो सतगुर दी बख्शी हुई स्वासां दी पूंजी नूं पूरी करदिआं गुरचरणा विच जा बराजे हन, उन्हां दे अंतम अरदास वास्ते सारे साथ संबंधी सज्जन मित्र भैन भरा सतगुरु के चरणों में हाजिर हो के अरदास करने वास्ते जुड़े हो कि माता जी नूं सदीव काल सतगुर सचे पातशाह अपने चरणों च निवास बख्शन, पिछे परिवार नूं भाणा मनन दा बल बख्शन, प्यार इतफाक बख्शन। सतगुरु जी का अटल फुरमान है, राणा राव ना को रहे रंग ना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंधे तीर। आपने पंचम पातशाह का शब्द सरवण किया है, सिद्ध साधक गिर ही जोगी तज गए घर बार, कहां सो भाई मीत है देख नायन पसार। सतगुर आखते हैं, हे बंदिया नजर मार के देख अपने वड़े वडेरिया ते परिवार विच जेड़े वड़े वडेरे चले गए संसार च। अगली गल सतगुरु सानू समत दे के समझाउणा करदे हन कि एक गल निश्चय कर लईए, एक चाल है एक चाल से सब अपनी वार। इह सतगुरु दा अटल फरमान है, जो उपजो सो बिनस है परों आज के काल। पर एक बल जरूर ध्यान करने वाली है, जो सतगुरु सानू समझाउणा करदे हन कि हे भाई अपने जीवन काल विच गुर परमेश्वर दे नाल जुड़ के गुर परमेश्वर दा सिमरन सेवा बाणी पढ़ के अपना जीवन सफल करिए, ताकि साडा लोक भी सुहेला हो जाए ते परलोक भी सुहेला हो जाए। परलोक विच ही सानू गुरु नानक साहब दे चरणां विच निवास मिल जाए, ये यतन करना हर वेले हर इंसान दा फर्ज है। जीवन सफल करके जाइए, बाजी जित के जाइए। तो माता जी ने बहुत सतगुर दे दर दी सेवा कीती, परिवार दे नाल बड़ा प्यार स्नेह रखिया, सारे परिवार ने सेवा कीती जो दास ने सुनिया है। सो यही अरदास है कि सतगुर सच्चे पातशाह सत्कारयोग माता जी नूं आप दे चरणां विच निवास बख्शन, पिछे परिवार नूं भाणा मनन दा बल बख्शन, प्यार इतफाक बख्शन। आओ ये पंक्तियां पढ़ के फिर समाप्ति करिए। सारे गुरमुख माई भाई अपने दिलों अरदास करो, आओ सारे रल के सरवण करो, नाले गायन करो।

अरदास, गुरबाणी कीर्तन छे पड़ी, अनंत साहब जी की अरदास, अखरवार दकटा पुलिस को माफ करनी, हाजरी दर कर सचखंड के प्रवान करनी, दरों घरों पावन अटल हुक्म नाम।